0: शिशु क्लिनिक फेसिलिटी विशेष खोर हैदान सड़क विभाग को अगाड़ी एड्रेस बैंक घर को भवन में संपर्क मोबाइल 98 4 78 42 572।
1: सूर्य को विकिरण बढ़ते आंखा कमजोर होते ग्लोबल वार्मिंग आंखा में रोग अरु थुप्रे समस्या तर समाधान पशुपति आई केयर सेंटर में विज्ञ आंखा का डाक्टर संगे आंखा चेक करने अत्याधुनिक उपकरण हम आंखा सुरक्षा दिने उच्च क्वालिटी का पावर ग्लास र फ्रेम उपलब्ध अब ढुक्क हो पशुपति आई केयर सेंटर ने तपाई को आंखा को रक्षा करने पशुपति आई केयर सेंटर कपासी दान संपर्क नंबर 98 43 00 88 04 98 43 00 88 04 www.pasupatiicare.com।
2: हार्दिक आमन्त्रण
3: दाङको घोराई उपमहानगरपालिका पाँच धारापानी स्थित पाण्डवेश्वर महादेव मन्दिर व्यवस्थापन समिति धारापानी दाङको आयोजनामा यही 2083 साउन 1 गतेदेखि भदौ 1 गतेसम्म सञ्चालन हुन गइरहेको शिवपुराण तथा श्रृंगारिक महाआरतीमा उपस्थितिका लागि सम्पूर्ण धर्मप्रेमी श्रद्धालु भक्तजन दानदाता समाजसेवी उद्योग व्यवसायी तथा आम नागरिकहरूलाई हार्दिक आमन्त्रण गर्दछौ। साथै महोत्सव अवधिभर करोड़ दीप प्रज्वलन दैनिक भव्य श्रृंगारिक महाआरती रुद्राभिषेक शिवलिंग जलाभिषेक भजन कीर्तन सत्यांग धार्मिक प्रवचन तथा विविध आध्यात्मिक कार्यक्रम संचालन गरिनेछ। भगवान पाण्डवेश्वर महादेव को कृपा प्राप्त गर्ने यस पुण्य अवसर में उपस्थित भई कार्यक्रमलाई सफल पारिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं। आयोजक श्री पाण्डवेश्वर महादेव मंदिर व्यवस्थापन समिति तथा श्रृंगारिक महाआरती मूल आयोजक समिति धारापानी घोराई पाँच दाङ
2: अध्यक्ष गणेश कुमार अधिकारी संपर्क मोबाइल नंबर 98 5 78 30 4 4 र सचिव विष्णुराम आचार्य सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98 5 78 32 391।

0: वायरनेट को बाय वन गिफ्ट वन फ्री ऑफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट 2700 में खरीद गर्दा सोही इंटरनेट पैकेज नया चरण को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागि एक महीना फ्री इंटरनेट वायरनेट अब सबै कनेक्टेड।
1: तपाईं यति बेला सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम ट्रिपिंग टाइम। यदि तपाईं पनि आफूलाई मन परेको गीत सुन्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 5784954 डायल गरेर आफूलाई मन परेको गीत सुन्न सक्नुहुन्छ।

0: सुरक्षित जीवन जीवन जीवन बीमा जरूरी था। रिलायबल लाइफ सदैव भरी लाए।
1: मध्य पश्चिम टाइम चेक यति बेला दिउँसोको 2 बजेको छ।

0: बाय नेट को बाय वन गिफ्ट वन फ्री ऑफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद गर्दा सोही इंटरनेट पैकेज नया चरण को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागि एक महीना फ्री इंटरनेट बाय नेट अब सब कनेक्टेड
1: मध्य पश्चिम एफएम 91.4 मेगाहर्ट्ज़।

0: वाय नेट को बाई वन गिफ्ट वन फ्री अफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद गर्दा सोही इंटरनेट पैकेज नया जडान को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आफ्नो लागि एक महीना फ्री इंटरनेट वाय नेट अब सबै कनेक्टेड।
1: वरिष्ठ पाइल्स फिसर तथा फिस्टुला रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रभाकर शाह अब दाङ गुराईको दिव्य फार्मेसीमा।
2: आधुनिक लेजर प्रविधि द्वारा उपचार र बिना चिरफार उपचार,
3: डाक्टर द्वारा दिइने सेवाहरू, पाइल्स फिसर फिस्टुला र पाइलोनाइडल साइनसको आधुनिक लेजर प्रविधिबाट बिना चिरफार उपचार,
4: बिना टाका प्रभावकारी उपचार,
2: दिशा गर्दा दुख्ने, रगत आउने, मासु पलाएको, घाउ भएको, पिप बग्ने, चिलाउने, कब्जियत एवं सम्पूर्ण रोगको सफल उपचार तथा परामर्श,
4: शरीरको कुनै पनि भागमा मासु पलाएको, अनावश्यक तथा मुसा कोटी आधुनिक मेसिनद्वारा

0: सिटी प्लाजा होटल को उत्तर पट्टी थारू गली भुराही दांग।
1: संपर्क मोबाइल नंबर 98577 71546।

0: प्रोडक्ट हरू कोकोनट चोकोनट भिटा मिल्क बटर फ्राइड क्रीम मिल्की बटर तथा डाइजेस्टिव होल व्हीट बिस्किट
1: हेरा हेरा हेरा यो हो हाम्रो चोइस कोदोको डाइजेस्टिव र कुकी छ है नाइस
0: अडगुरी।